सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Preciso e curvar dos raios e doar sangue. Curvar que tem. Shit.

0: स्वपन मात्र भी कोई कमजोरी हो उसको छुट्टी देना। तो जैसे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Shut up।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, नाचो गाओ, आपके ब्रह्मांड जीवन है, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वो अगर ऐसा गंभीर हो के नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं, अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते, प्यार से याद जरूर करते हैं, रोहण भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगा, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक, जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और पसंद, इसको कहा जाता है योग अगर नाम निशान समापन। मारने में फिर भी लाश तो रहते है ना, पसम होने के बाद नाम निशान कदम, तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ, जिस स्वरूप में रहने जाओ मास्टर सर्वशक्तिवान, आर्डर करो समाप्त करने की शक्ति आपके आर्डर से नहीं माने, ये हो नहीं सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Oh, no.

0: दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना, देना आता है ना, लेना तो आता है लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो, फिर अगर आवे आएगी, बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से भी फिर आती भी है। लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या, देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, आपने तो दे दी ना तो आपकी रही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, आपको मदद मिलेगी तो ये मेरी नहीं है, ये अमानत मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाएगा क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना। जो भी आए मेरा बाबा, तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या, बाबा ही मेरा है ना। तो बाप पर अधिकार रख करके अमानत समझ के बाप को दे दो, अपने पास आने नहीं देना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बेफिक्र बच्चा का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे, हो अलबेला पन और के हम तो बेफिक्र रहते अलबेला पन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
0: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी बच्चों को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। बच्चे सब वापस

Sadaba.

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद कर, पाप देख

का शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं,

Y Siena. Hoy va. Awesome.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रतिज्ञा, चाहते जैसे वाणी द्वारा प्रतिज्ञा करते हो, वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव कौन और कर्म का ज्यादा कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बंधन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहो, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा। चल सकता है शरीर, कभी तो एकदम खराब होता है ना वो बात दूसरी, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती। ये भी दवाई है, कितने खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक मिलती।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: శివా రేడియో
1: సత్యం శివం సుందరం
2: इस

piel. O rang lagat devi. To ab sabhi soni par. Kya chalai?

0: சிவன் பேக் டிக்ஷனரியேன்
1: और राधे संस्कृत।

Sabik.

0: Sangalapka. Apanese.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा के पास बच्चों के पत्र वाचित किया, बहुत अच्छी अच्छी हिम्मत किया क्या हम आपस से अवश्य आएंगे, बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रोल्डियान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं, अब जो हिम्मत रखी है हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। 9 वर्ष के नए उमंग बहुत अच्छी अच्छी लिखी है, चाहे विदेश के बच्चों ने चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा यही ऐसे बच्चों को वरदान देती है, इसी हिम्मत नशे में अमर भव।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता।

Yuck.

आगे बढ़ेंगे।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल के लोग

बंक लगाओ।

0: Infernal Mataniban Nirantar Shaktiyon Ka Anubhav Karao Mansa Dwara Vibration Dwara Vajja Dwara Gyan Tando Karam Dwara Gunoka Tando Sara Din Jai Mansa Jai Vajja Jai Karam Dino Dwara
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी कभी लिफ्ता बन जाए, ये हो ये करे ये मदद दे ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, ये लेवतापन दातापन नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हर एक वर्गीकरण से

0: टेस्ट को खत्म कर पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैले, पेस्ट
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मेडिकल वाले अब ऐसी तैयारी कराओ करो जो सभी जैसे बाप दादा ने कहा बेफिक्र बात फिक्र नहीं तो बीमारी भी नहीं। ऐसी दवा

सभी के मन

0: Bota-te, Pedro. Bota-te. Siva Carreia. Cartigelo. Vigeto aapke saath.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपने बड़ी दादी को देखना, कितने न्यारी और Yeah.

सारे लाइफ में हद तक का मेरा पन, हद तक का मैं पन से न्यारी, रही है उसकी रिजल्ट। बीमारी कितनी भी है सिनेरी, एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं। क्यों? निशानी देख रहे तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं, तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु में रही, सेवा में साथी रही, तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते?

0: Receba uma coisa. O tsase.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Satan. Santos Terene Valley. Santos Terene Valley.

假如Chama

として。

Strong.

そっとして。

కెత్తుని పిలుస్తుంది. Yeah.

钱。Estética.

Jump.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रही है। समय की समापति अचानक होनी है, ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परम आत्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनेगा, इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेंगे, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो, तो रचना का इंतजार रचना करे न कर। मास्टर रचता समय का इंतजार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: डबल विदेशी परसेंटेज के बिना फुल बन गए तो बाप दादा चाहे भारत वाले भी अगर फुल पास हुए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा, क्या करेगा, बस रफ शाबाश दे देगा और क्या करेगा। चित्रों में दिखाती है ना, इन्होंने श्री कृष्ण दिखा दिया। जब तूफान आया पानी भर गया तो क्या हुआ, सांप छत्र छाया बन जाए। करके देखो, क्यों कर ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी खुश राजी और कदम आगे बढ़ाने वाले निमित्त बने हुए हैं। भले फर्क है

क्या कर रहे थे?

下一。

हवा रख भी देते। कि वाह बच्चे वाह, ये बाप और बच्चों

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बोल, में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं,
2: दादा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sí.

Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा जय नहीं है, जय पुराने।

要saber saca la voz de Durgar exíganme apanego venduro fome.

Síganme, la Gaia. Acha, api. Sarıdın.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये सब साधन आप बच्चों के सेवा के सहयोग के लिए निकले, माँ बाप जब समाचार सुनते हैं ये ईमेल है ये है खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन माँ बाप को भी साकार में नहीं मिला लेकिन बच्चों के पास है। सेवा का साधन समझ के यूज करना, सेवा के लिए साधन क्योंकि विश्व कल्याण करना है तो ये भी साधन सहयोग देते, साधनों के वश नहीं होना लेकिन साधन को सेवा में यूज कर।

diabo. Satan ke piche. Satan akam na yo. Bagi papta ta kushote. Sin pitilte hai bachon ke fata fat. Kar rahi hai. कैसे काम कर रहे हैं? बहुत बिजी रहती है ना? ये हंसती है। अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना? जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के बिना का सेकंड भी निकालो। दस मिनट में ये काम करना है।

0: minutes lang na. Two minutes. Sad namin lang. Siya ho sa te. Ho sa te. Ese puste. Kahit risi. Ho sa te. Ho sa te. To abhi kabhi nahin kehna. Bahut busy. Baap dada chehra bhi dekhte hai us samay. फोटो निकालने वाला होता है कितना भी बिजी हो लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना का समय ऐड करो होता क्या है सेवा तो बहुत अच्छी करते हो समय भी लगाते हो उसकी तो मुबारक है लेकिन स्व उन्नति या साधना बीच बीच में न करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है उठी भी थकती है हाथ पांव भी थकता है और बीच बीच अगर साधना का समय निकालो तो जो थकावट है ना वो दूर हो जाए खुशी होती है ना खुशी में कभी थकावट नहीं हो काम में लग जाते हो बाप दादा तो कहते हैं काफी समय एक्शन कॉन्शियस रहते हो होता है ना ऐसे एक्शन कॉन्शियस की मार तो मिलती है वेस्ट तो नहीं जाते हैं लेकिन सोल कॉन्शियस की मार और एक्शन कॉन्शियस की मार्ग में अंतर तो होगा ना कि नहीं होगा होता है फर्क होता है हाँ तो अभी बैलेंस लिंक को नहीं तोड़ो नहीं जोड़ते रहो बाप दादा जानते हैं मेहनत बहुत करती है लेकिन बैलेंस जितना समय निकाल सको सीकर निकालो मिनट निकालो निकालो सर हो सकता है पांडा हो सकता है टीचर्स हो सकते हैं और जो ऑफिस में काम करती है वो हो सकते हैं हाँ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अच्छा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहाँ है आनंद ही आनंद

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: चलना और राज युक्त

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खुशी से

0: शब्द खत्म कर दो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, आपके पास परमात्मा विल पावर। परमात्मा ने विल की है पावर्स की, विल पावर। तो परमात्मा विल पावर के आगे पावर्स परिवर्तित होना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ स्वयं में एक संकल्प होना ही है। ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये परमात्म टच बुद्धि में जाने से रुकावट बन जाती, चाहे देश में चाहे विदेश में। क्यों कैसा ऐसा तो नहीं, इस संकल्प से कभी भी कोई कार्य अर्थ सामने नहीं जाओ। क्यों, क्या ऐसा वैसा, ये पहले आपस में सोच के फाइनल करो, वो बात अलग। लेकिन जब सामने जाते तो सदा दृढ़ संकल्प से जाओ, होना ही है। आकर तो सभी कुछ को नहीं, अभी सेवा में सकाश दे उद्योग को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक मत होना अर्थात सफलता, सफलता आप बच्चों का हर एक का जन्म सिद्ध कार्ड, उसको यूज कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Çok akıllı.

Farnham.

Courtney.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज के दिन सभी के दिल में Bye.

Feliz birthday, girl.

0: हर बच्चे के लिए। क्या चैतर
1: Yeah।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को अशांति

जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो।

सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है। ये स्मृति रहती है, सारे विश्व की आत्माओं को सेंटर्स की सेवा।

Jam on semelteo. Sí.

0: ऐसे समझते हो, ऐसा नशा है नशा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: फ्रिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीजें डालती, एक तो देवान, वो तो नेचुरल सबको अनुभव है 63 जन्म का, फिर देवान प्रकट हो जाता है, और दूसरा है दे अपमान। देवान और दे अपमान ज्ञान में जितना आगे जाती है सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है। कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा, कोई ना कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में ये अपमान अपने पृथ्वी आता, और दूसरे के गुण या कला या विशेषता बच्चों की छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाए, दिल खुश, चेहरा खुश,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Sip.

0: 我心知嘅喊歌佢全未啦 ，Brahman Parivar maybe。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा यही चाहते हैं। कि हर एक स्वयं चेक करे, अगर कोई भी So

स्टॉक।

समान

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

そう。

one.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भगत उनके बनेंगे। संगम पर हर एक भगत भी बना रहे, योग दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस। Oh, yeah.

Sim.

você.

इस संगम के जीवन में भी।

see.

creepy Batman. Sarabi. Mokase nahi. Lekin sarabi.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: नहीं मिले तो भी आपके चेहरे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता है। बाप एक और बच्चे अनेक,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप सभी अनुभवी के पाप का निस्वार्थ अवनाशी सने हर एक बच्चे को snake।

hiç hocandır.

अपने

Sedio.

So

सने ही बना दे।

0: Rai bona ne valiot. Kyo. Kisane. Me praptya. Sapasht anbhoti. Archa.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने रिजल्ट देखी सभी के कर्मों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, रिजल्ट में क्या देगा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न, जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है, इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता, क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे, फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे हैं किस में मेरी कोई नुकसान है, समझा?
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कहीं बच्चे सोचते

想喜欢喝滴滴滴我不知道爸爸我的每个人的那个爸爸给你这是啥Rope me. Sada bachon ke saath rahe. Aise. Vatan mein bhi. Rehte. Bachon ke saath hi rehte. Akele nahi rehte.बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं ऐसे बाप को भीBachon ke bina aur kuch nahi sochta. Akele nahi rehte, saath mein rehte. Sakar mein. Toh. Saath ka anubhav. Sakar roop mein.थोड़े बच्चे कर सकते थे अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहेSaath nibhati rehti jaise

0: Antibiotika ligger abba av jätteroba med
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोगों को पता है, पहले पहले जब मुझे सेवा में गई तो ब्रह्मा कुमारियों को सफेद साड़ियां देख करके वो दरवाजा बंद कर देते थे, दूर से ही दरवाजा बंद कर देते थे। सफेद साड़ी ग्रस्तों को अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए बच्चों ने सेवा कैसे शुरू की उनके पोस्ट बॉक्स में डालना थी, क्योंकि पोस्ट तो निकालेंगे तो पोस्ट में कईयों को संदेश मिल जाता था। पहले पहले सर्विस जब आरंभ हुई है तो बहुत मेहनत से शुरू हुई।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई दे, जैसे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: So

में पाप के साथ।

0: किस्सा घर में आ जाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

Shh.

Ich.

0: Santana. Ô Santana, Cuxi. Que fechista.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो फा बन जाता।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता। समृद्ध दिवस कहा जाता है। Will power.

Me.

missing. Sheesh.

Return.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

so

0: tonight.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे। मेरा बाबा कहेंगे तो शक्ति हाजिर दिल से। ऐसे ही मेरा बाबा ने दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएंगी। वो कौन सी शक्ति? विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना, दिल से कोई भी मुश्किल बात आए, मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान उसके आगे मुश्किल किया, लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो अचानक या अंधकार हो जाता है, अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी ये गलती करते हो, छोटी सी

0: तो सहज विधि कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। अपन ने मास्टर सर्वशक्ति स्मृति के सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे, बिना सीट के अपसेट होते। सीट है तो अपसेट नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, देखते हैं पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है, लेकिन समय अचानक

0: सोचते हैं हर बच्चे को कहते हैं अटेंशन प्लीज। हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क्स तो होना चाहिए। नंबर थोड़ा सा पीछे है वो बात अलग है, लेकिन अटेंशन है, परिवर्तन भी है, ये चीज कर अलबेलापन तो नहीं आता। हो जाएंगे ये क्या बड़ी बात है। इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। तो बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजॉरिटी खुश भी है, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती। अब दादा मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट अटेंशन पूरा हो, ऐसे नहीं सोचे ये तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिन से किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा, रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय पत्थर के रूप में

viene de Saban Zamper. People talk at it. Jesus Zamper. Vesa Rappelogset. I put you for it, Jatore. Get here, I'm to something like that. लेकिन वो मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती, वो नहीं छोड़ते, तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज थी तो आप लेते क्यों? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? फेंकेगा क्या? इसलिए फियर रत्त संबंध और संपर्क

0: उस समय नच करता है, ये भी अनुभव करती है। नहीं करना चाहिए, श्रीमत नहीं है ये, बाबा का समान बनना नहीं है। टच भी होता है लेकिन अलबिलापन सुला देता है। इसलिए आप भी स्वर्ग के प्रति ज्यादा है, खजाने खर्च नहीं करो, जमा भले करो लेकिन खर्च नहीं करो, सेवा भले करो व्यर्थ खर्च नहीं करो, बहुत जमा करना है ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वर्तमान समय

సంకల్ప విక్లప్ నై వ్యరత్ సంకల్ప దూసరా భీ సునాయి గయా సోచా

Dusra ab hamari return journey hai. Ek hi shabd return is

0: संकल्प किया था पाप का बोल, किया था पाप का कर्म, किया था इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वो फॉलो फादर सहज है ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही शरण दे रहे हैं कि समय के समीप अनुसार व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता की निशानी। सारे दिन में ये भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अपमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अपमान में आते हैं तो ये भी व्यर्थ संकल्प और मेरे पद के अशुभ संकल्प मैं कब नहीं हूं। मैं भी सब जानता हूं, ये मेरा संकल्प ही यथारथ है, ऊंचे ये मेरे पन का अपमान का संकल्प ये भी सुख्यम अपवित्रता का अंश। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे सेवा और भगवत से कर रही है, ऐसे स्वयं को भी स्व के प्रत सेवा स्व सेवा और विश्व सेवा सेवा अर्थात चेक करना और अपने को पाप समान बनाना। कोई भी कमी कमजोरी पाप को दे दो ना, क्यों रखिए, अच्छा नहीं लगता, क्यों कमजोरी रखते हो, दे दो, छोटे बच्चे बन जाओ देने के टाइम। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज संभाल नहीं सकता, कोई भी चीज पसंद नहीं आती ना, क्या करता है, मम्मी पापा ये आप ले लो। ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ बंधन जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाप दादा देखते हैं, एक तरफ ये सोच रहे हैं अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, ये तो अच्छा नहीं है ना। एक तरफ अच्छा नहीं है कह रही है, दूसरे तरफ संभाल के रख रही है, तो इसको क्या कहें, अच्छा कहें, अच्छा तो नहीं है ना। तो आपको क्या बनना है, अच्छे थे अच्छा ना, अच्छा भी नहीं अच्छे थे अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बात हो ना, बार बार पाप हासुर हासुर है, उसको दे दो। और अगर वापस आवे तो अमानत समझ के फिर दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती, क्योंकि आपने तो दे दी तो पाप की चीज हो गई। पाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे, निकाल लेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, संभालेंगे तो नहीं ना। तो दे दो, पाप लेने के लिए आए आपके पास है नहीं जो, तो लेकिन ये तो दे सकते हो ना। आग के फूल है वो दे दो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई कुश्ती का

0: 都深咗嘅嘢，佢自己嘅嘅嘢，知道咗嘛咯？ I'm not gonna be guilty. Ka pat paratiye ke aake ke liye aap seekh lo. To ye prasthiti, ye to तो माया समझ जाती है कि ये कपड़ा तो है मारो अच्छी तरह से.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज के दिन फरश को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी सकते हो। दे सकते हो, हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। लेकिन मन का हाथ उठाना उठा रही है, पुराने संस्कार को सदा के लिए हाथ उठा रहे हैं। फिर से

उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से क्या दे रहे हैं सभी को मस्त।

Tetapi Bab tetapi Mane Manbe Dance.

0: wie man mit dans gerät. बोलो
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: साधन नहीं है और ख्वाब को तो वैराग है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग, पहले साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन यूज करो, बड़े दिल से करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते कमल पुष्प समान। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपका कर्म का योग का फल है। लेकिन वृद्धि की बात ऐसे तो नहीं कि साधन की प्रवृत्ति में साधनों के वश फस्त नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, शूस करते हुए उनकी परवाह में नहीं है। न्यारे साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी आवश्यकता है विश्व में अति में जा रहे हैं, तो अभी सच्ची वैराग वृत्ति चाहिए और वो वायुमंडल बनाने वाले आप, पहले स्वयं में फिर विश्व।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, ऐसे मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद बाप की। लेकिन हिम्मत नहीं यार, अपन ने भाग्य का सितारा सदा चमका दे रहना, क्योंकि इस जन्म का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थ नहीं तीव्र पुरुषार्थ, अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाले। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हार, बातें आएंगी लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, आपके आगे बात क्या है, बात आती है और चली जाती है, जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपना ही तकदीर नहीं कमा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे कौन रहेंगे? आप ही हो ना, चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतक। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो पाप मेरे कंबाइंड चिंता पाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्यों का पाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना, तो बच्चे मुरझाए हुए किसके बच्चे? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे बाहर आ जाए, लेकिन बाहर को भी आप रुई बना सकते हो। बाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो बाहर है वो रुई हो जाए, क्योंकि सर्वशक्तिमान को साथ कर दिया ना। आप भले कमजोर हो लेकिन सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है, तो समय में काम में लगाओ, कहने तक नहीं काम में लगाओ, तो सदा खुश नेमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब खुश नेमा चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पर देखो, करे चैलेंज।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

भारत के ऊपर अटेंशन खींच रहे नहीं। जो कई बच्चे कहती है खराब संकल्प तो नहीं है ना, ये छोटे छोटे व्यर्थ संकल्प है, लेकिन कभी भी धोखा समय पर दे सकते। इसलिए व्यर्थ को भी कब करो, टाइम क्योंकि इस शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे। हाथ उठाओ। अच्छा, तो बाप दादा यही सौगात चाहते हैं व्यर्थ को समाप्त करो, अटेंशन दो, बुराई बुराई के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन व्यर्थ के ऊपर भी अटेंशन पसंद है ना, पसंद है, हाथ उठाओ। पसंद है तो सब पास हो जाएंगे, पसंद है तो पसंद है।

Saturday bus.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

अनेक जन्म की प्रलोभन बनानी तो आजकल बाप दादा ने देखा है, अशुद्ध संकल्प कम चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार संगम योग के

0: संकल्प दोनों के मूल्य को जान। समय को और संकल्प को सफल
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: See, but

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है, किया कि कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही। लोग आपस में उसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है, ये मरना मरना नहीं है। जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना, इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर, ना कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाके कुछ याद रखना, कोई आत्मा वचन नहीं कर रहे, परमात्मा के आगे वचन दे कभी।

0: Sorry. एक मिनट के लिए अपने दिल से, वैसे दिल तो आपकी नहीं है, बाप को दे दी है, फिर भी दिल में एक मिनट वचन करो कि सदा विघ्न विनाशक आज्ञाकारी
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जाती है

0: Und so naja, ich do atmat ja and dino kal chickens ke samajh ke fir kuch bhi karam karo sirf
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर बाप समझ के कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकता। अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ऐसा नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी पाप माना दिल से तो वर्षे के अधिकारी बन सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को ये सेवा की आवश्यकता है जो चेहरी से नैनों से दो शब्द से भी कोई

0: ही वर्तन कर ले। आज मानना कि खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी बात तो समा देना अंदर मन में, बाप दादा को देख करके समा देना। एक शांत शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, अगर ये दोनों विशेष
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं, गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है, तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा उसे डरते हैं, दूर भागते हैं, सहयोगी नहीं बनेंगे। Yeah.

0: सौ नहीं मुस्कुराओ, जोर से हंसना नहीं मुस्कुराना, क्योंकि बाप दादा को भी दीवार पर शरद चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन बैठने के वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए। कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे में। अगर आप फोटो निकालो ना, आपको खुद लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना, पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द छोड़ो। अभी बाप दादा हर बच्चे को ये दो मास दिए, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी

मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बांह को चलाते हो, जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ रखो, रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो, आज मन के रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए, तब समृद्ध बन वायुमंडल में समृद्ध बन की

0: सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो दीवार, करना ही है, करेंगे देखेंगे ये के नहीं चले।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसा एक दो को सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हाथ उठाओ जो बेफिक्र है, बेफिक्र थोड़ा भी फिक्र नहीं है, देखना जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है।
4: Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा चाहते हैं एक एक बच्चा खुश निमा खुश नसीब दिखाई दे चेहरे से चलन से क्योंकि इसके लिए बाप दादा चाहते हैं कि अभी से लक्ष्य रखो, जैसे अभी ये 75 वर्ष के कारण सबको मांग गए सेवा करने का, ऐसे ही उमंग को चेहरे से सेवा करने का, क्योंकि दिन प्रतिदिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं। और कुमारों के बिना से

0: teachers batao kumaron kipinasin tarjal sa te teachers kumar kifishista ikmo tachie kumar chotret sa kalab kari
1: रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Baby.

स्वरूप

सीट पर सीट है तो श्रेष्ठ कर्म सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देंगे। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना योग युक्त राज आवश्यक।

0: सोचना अलग है, मनन करना अलग है, स्वरूप अनुभवी स्वरूप बनकर चलना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: टीचर को क्या चाहिए? सेंट्रल अच्छा हो, कपड़े बोले कैसे भी हो, लेकिन सेंट्रल थोड़ा रहने लायक तो अच्छा। और जो साथी है वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, पापा की प्रणाली अच्छी हो, अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल रखती है थोड़ी। फिर समझती है कि क्या करें, ये मदद करता ना, अभी वो चला गया, मदद कर चिंगिया सूता वह पाप है। तो उस समय कौन दिखाई देते चिंगिया सूया पाप? Yeah. इस समय।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मेरा हो गया और क्या चाहिए।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी बच्चों से क्रोध

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की पट्टी की और पांच ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आत शुरू भी की और अंत तक आपके सामने, तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ, चलो दो जने हो सेंटर पर, कोई एक सखी को साथ बना दो और अपने बड़ी को सुना दो। तो क्या है, पट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे तो उसका मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा, अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना।
2: दूसरों को कराएंगे
1: भी और अपना अनुभव सुने।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी को अपना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे, पक्का है ना? साथ रहेंगे ना, बाप को अकेला नहीं छोड़ के चले जाना। अकेला तो रे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो, बाबा मेरा बाबा, पापा हसर, आपकी समस्या को हल कर देंगे। दिल से बोलना, बाबा ये बात है, बाबा ये करो, बाबा ये, बाप बंदा हुआ है, लेकिन दिल से ऐसे नहीं, मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Silence की शक्ति

叫，这是叫，非是manor botico control कर सको फिरत संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए इसीलिए कहावत है मन जीते जगत जीत जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ है जहां जाओ जब तक जाओ तब तक आर्डर से चला सकते हो ऐसे ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है लेकिन कर्म के समय व्यवहार के समय संबंध के समय

యొక్క ఫైనల్ రిజల్ట్ కి పెలే భీ బీచ్ మే పేపర్ లియే జాతే తో ఇస్ विशेषता क्या करेंगे साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको एक सेकंड में स्वीट साइलेंस के अनुभूति में खो जाओ क्योंकि साइंस और साइलेंस साइंस भी अति में जा रही है उस साइंस पर

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बहुत

tight.

0: सभी बच्चे आपसे भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हैं।
1: अमेरिका वाले गुड मॉर्निंग करते होंगे, यहाँ वाले गुड इवनिंग और गुड नाइट करते हैं।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा भी बच्चों को मधुबन में देख खुश है।

बच्चों के मन में खुशी

切，馒头饭，没安娜，阿达，不是。Mother, one man.

खुशियों की। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: Jesse есть.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

есть

Yes.

Chanteo na sua manco.

suerte.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहिए, क्यों जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से

संस्कार के स्वरूप में देखो, चाहे कैसे

सकती। आत्मक भाव इमर्ज करो, जैसे शुरू शुरू में देखा संगठन में रहते आत्मक दृष्टि आत्मक वृत्ति आत्मा आत्मा से सेवा के विस्तार में सेवा के विस्तार के संबंध में चलना बोलना संपर्क में आना मर्ज हो गए, खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गए। So

Sete safoltatelad. Sup.

श्रेष्ठात्मा देवात्माओं के सबसे

Sua roupa, sim.

0: सबसे सहज पुरुषार्थ
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद आपकी और ब्रह्मांड परिवार सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्म कार्य के निमित्त कोई भी कार्य में आऊं, बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट चलाने वाला आप ही चलाएंगा, ये निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावना हार निमित्त
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मात्रा

Sorry, nicht Deko. Lecken. Was peace.

Weiblichen.

し。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Show.

かか。ちょっ

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज प्रेम के सागर।

विमान से यहाँ पहुँच गए हो ना।

Sejasne.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि गाना का मुश्किल।

चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी वार्धक्यता का झंडा सबके दिल में ले रहे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Okay.

Dice.

0: सफल किया और करें तो इस वर्ष इस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाना तो सदैव वृद्धि होती जाए। हिम्मत दिलाओ, बाप दादा ने देखा है कोई कोई स्थान में हिम्मत कम दिलाने की शक्ति है। हिम्मत दिलाओ, हर कार्य में मनसा में भी वाचा में भी संबंध संपर्क में भी कर्म में भी हिम्मत लाओ। टीचर्स की सीटी है हिम्मत में रहना और हिम्मत दिलाना, क्योंकि टीचर्स को जो बाप की मुरली सुनाने की चांस मिला है और तख्त मिला है, ये एक्स्ट्रा मदद है। तो हिम्मत और खुलास दिलाओ, सारा क्लास रूहानी गिरा हुआ गुलाब दिखाई दे। सुना टीचर्स ने खुलास में लाओ क्लास को।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

So

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबसे ज्यादा

0: Arásate. Abillance.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Awesome.

Chuck Bissell.

eccolo. Mary. Fred.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सफलता सदा एक एक बच्चे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुछ और

Y aquí es que para amar.

0: दृढ़ संकल्प के कारण, तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता? ये तो एग्जाम्पल है आपके आगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, ये

0: genere sarvesto achi ho rahi hai lekin jab ek parivar prabhu parivar laukik parivar nahi prabhu parivar prabhu parivar
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी पूछते हैं आगे क्या करना है, बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा में ज्यादा बने बनाई स्टेज पर चांस लो और उनको सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। सत्तर साल अपने हिम्मत से किया, अब भी दूसरों का भाग्य बनाओ। भाग्य बनाने का चांस दो उन्हों को। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं सकाश कौन सी दो, एक तो रहम दिल बहुत बनो, कि ब्याह के बाप के साथी बनो, शक्तिशाली फिरती से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करे, ऐसे ऑफर चारों ओर आवे, हर जोन में ऑफर आवे, ये सुतई प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी वो नौका भी सहयोगी सनई बनने का चांस दो, उन्हों को भी चांस दो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सनई सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति है, लेकिन उनको सेवा के साथी बनाओ, उनको भी उत्साह के पंख दो, है चारों ओर, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी देखते हैं और सनेही सहयोगी आत्माओं को भी देखते हैं। बाप दादा नजर में है, लेकिन चांस नहीं दिया है, प्रैक्टिकल चांस नहीं लिए, तो ये वर्ष तो वो भी आपको लेना देंगे कि आपको तो आपने बताया ही नहीं कि ऐसा भी कर सकती है। इसलिए आप भी चांस देने वाले बनो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।